जितना तो नहीं मितियों के चुके अगस्त ने नहीं जितना तो नहीं मितियों ने नित्तक ने बस था वाव अगर भी क्या तो ये था कि चुगस्त ने नित्तक ही नहीं आनो अगर भी क्या तो ये था नित्तक ने बस था 883 था 12 आज के लेंजिंग की चुगस्त ने नहीं जितना तो नहीं मितियों इमेजिंग की गुने 20,000 Ako kutako mapema kutuma kinyuru kituke Agostini nituke inyona Kutuma kituke Genyu kinyuru kituke Agostini ni Takitari shile kituke inyone Nitong nebo star 883 star 12 age Agire inyong kituke gale Ernest Iegona Natadino 520 shillings Imagine ni kuna kituke Agostini ni Kutuma tuta asuma na kutu SMS mitinyona Kumijanata negoi go anyone airtime gitu genyona a gumiji denegoi go anyone gitu gostenani kumigura jitenegoi go anyone gora anyone gitu gostenani